पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे डिस्को के धुन पर, अपने प्यारी के साथ खूब नाच भी करेंगे।